ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए आज ही एक बहुत प्यारी खबर है और फ्रेश खबर भी है। पॉप स्टार निक जोनस ने आज सोशल मीडिया पर अपनी जुलाई महीने का एक बेहद खूबसूरत फोटो डंप शेयर किया है। इसमें वो काउबॉय हैट्स पहनकर प्रियंका चोपड़ा को गले लगाते हुए और अपनी नन्ही बेटी मालती मैरी के साथ संडे वाइब्स एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। कल दीपिका, रणवीर सिंह, उसके बाद आज निक जोनस, मतलब वीकेंड की वाइब सेलिब्रिटीज काफी अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस परफेक्ट फैमिली फोटो को देखकर फैंस दिल हार बैठे हैं और मतलब बहुत ही अच्छी वाइब है यार। वीकेंड अपने फैमिली के साथ बिताना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और एक दिन हफ्ते का तो फैमिली के साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फैमिली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। एंड एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड बनाता हूँ आपके मूड को एकदम चकाटक। सुनते रहिएगा रेडियो नायरा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा।

0: मैं डब्लू हुईगुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें।
1: Ubaipu, Fugadi Pu, you like me and I like you too. Ubaipu, Fugadi Pu, you like me and I like you too. Ubaipu, Fugadi Pu, you like me and I like you too.

0: छोड़ा रॉकेट का फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: You like me and I like you too. Oh, bye, poo, poo, bye, poo. You like me.

0: Papa nih main menjadi.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM Monday to Sunday। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: नहीं गाना एंड करना था वो आगे में काफी ब्यूटीफुल, जिसने फ्रेंडशिप डे की वाइब भी सेट करके रखी है। आप सुन रहे हैं रेडियो मेरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड मैं यही कह रहा था यार, बचपन से लेकर अगर आपका कोई फ्रेंड आज तक आपके साथ है तो लकी हो आप। ऐसा बहुत रेयरली होता है, कैसा होता है कि पहले बहुत सारे दोस्त रहते हैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों की जो डिजिट्स है वो कम होते रहते हैं, ग्रुप्स रहते हैं बड़े बड़े, फिर कुछ ग्रुप के लोग चले जाते हैं, फिर ऐसा करते करते एंड में ना कुछ गिने चुने दोस्त ही मिलते हैं जो हमारे हर चीज़ में, अच्छी चीज़ में हमारे साथ होते हैं। और दोस्त वही है जो सही राह दिखाए, गलत राह से आपको दूर करे, उसे ही सच्चा दोस्त कहा जाता है। और मैं यही कह रहा था कि फ्रेंडशिप डे है यार, सेलिब्रेट करो, दोस्ती का कोई दिन नहीं होता है, दोस्त अगर साथ हो तो हर दिन फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, एंजॉय करते हैं अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का दिस पक्का।

0: एंड मैं हूँ आपका दोस्त एंड 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। मैं यही कह रहा था कि अगर आप कुछ किस्सा आपके दोस्त के साथ शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। आपका ये प्यार भरा दोस्ती वाला किस्सा मैं डेफिनेटली ऑन एयर लेकर आऊँगा। वेल दोस्त तो यार मतलब अभी क्या ही बताऊँ मैं दोस्तों के साथ, जो बॉन्ड शेयर होता है, जो चीज़ हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होती है वो चीज़ दोस्तों को अक्सर पता होती है, उसी दोस्ती के नाम आज का ये दिन है। और 90s के किड रिलेट कर पाएंगे कि फ्रेंडशिप डे के मौके पर हम वो फ्रेंडशिप बैंड लेते थे, आज भी वो मिलते हैं, लेकिन 90s के किड के टाइम में ये नया नया ट्रेंड आया था। फिर वो शॉप वाले जो भैया अंकल रहते थे वो रिबिन को काट के देते थे, उसी मेजरमेंट की हम सबको फ्रेंडशिप बैंड पहनाते थे, अलग अलग कलर के तरह तरह के कलर हुआ करते थे, एंड वो दिन भी एंजॉय करते हैं। अगला एक गाना
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा अहम शक्ल।

मतलब वो दोस्ती क्या यार जो रोस्ट ना करे, एंजॉय किया अपने गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो दायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड वेस्टर्न म्यूजिक लवर्स के लिए मज़ेदार खबर। मैंने कल भी कहा था इंटरनेशनल पॉप स्टार एरियाना ग्रांडे का नया एल्बम पिटल जो है वो रिलीज हो चुका है, और संडे नाइट ड्राइव के लिए इसकी बीट्स एकदम परफेक्ट बीट्स है। पॉप चार्ट्स पर ये एल्बम इस वक्त तहलका मचा रहा है, तो अगर आप अपनी लेट नाइट ड्राइव पर घर लौट रहे हैं तो अपनी प्लेलिस्ट में इसे ऐड करना मत भूलिएगा। एंड बहुत ही अच्छा एल्बम है, मैंने भी सुना, इट्स लाइक मज़ा है, बहुत मज़ा है। लेकिन यार 90s का म्यूज़िक मेरा फेवरेट है, बॉलीवुड 90s के गाने मुझे आज भी बहुत पसंद है। वो गाने भी फ्रेंड की तरह अपने साथ रहते हैं यार, है ना। मतलब कुछ भी हो जाए 90s के गाने अगर हम चलाते हैं तो कुछ हो ना हो वो वाइब तो सेट हो जाती है। वेल, कैसे चल रहा है आपका आज का फ्रेंडशिप डे एंड आपकी वीकेंड की पार्टी, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

यही कह रहा था कि यार अपने गाड़ी का स्पीड जो है वो हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। कुछ नहीं होता है, थोड़ा लेट हो जाता है पर चलता है ना। और हमेशा मैं देखता हूँ कि हड़बड़ी में हमें ही बहुत बार पता नहीं चलता है कि हम कितनी फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, बीच में क्या होता है, कुछ स्पीड ब्रेकर आ जाता है जिससे आप अवेयर नहीं हो, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपका गाड़ी का स्पीड जो है वो कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी का स्पीड कंट्रोल में रहता है ना तो गाड़ी ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है चाहे कैसे भी सिचुएशन हो जाए। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, गाड़ी का स्पीड अगर कंट्रोल में है तो कवर हो जाता है चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए। स्पीड कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है एंड एक सेफ डिस्टेंस रखना सारी चीज़ों के बीच, गलत चीज़ों के बीच और अपने बीच, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

आपने एंजॉय किया ये गाना एंड आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर डिडवाना नाइट्स। मैं यही कह रहा था कि एक मेरे लिसनर्स है, उन्होंने मुझसे पूछा कि पराग भाई आपके लिए फ्रेंडशिप मतलब क्या है। तो मैंने उनको यही कहा कि मेरे लिए फ्रेंडशिप है कि फ्रेंडशिप अपने हेल्थ के साथ करो, अच्छी फ्रेंडशिप अपने हेल्थ के साथ करो, अपने शरीर को जितना अच्छा दे सकते हो आप उतना अच्छा दो, क्योंकि आपका शरीर अगर अच्छा रहता है तो आप इस दुनिया में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। लेकिन आप अगर चीट कर रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप शरीर से ही करनी चाहिए, क्योंकि शरीर के साथ आपकी अच्छे से फ्रेंडशिप होती है तो बाकी के रिश्ते यू ही बन जाएंगे यार। इसीलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फर्स्ट एंड डू फ्रेंडशिप विद योर हेल्थ, ये मुझे बताना था आज। एंड एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए

0: और अब सारे मेरे लिसनर्स फ्री है अपने गार्डन में लाइक पानी डालने के लिए, अपनी गाड़ियाँ धोने के लिए. मतलब स्टेज वन के प्रतिबंध जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा हटा दिए हैं. तो आप इस चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी कंट्रोल में कर सकते हैं यार. गाड़ी धोना है तो ट्वाइस इन अ वीक धो लीजिए. पेड़ों को पानी तो डालना है, लेकिन एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हम सब ने ये देखा है कि अगर पानी के लिए प्रतिबंध लागू किए जाते हैं तो कितनी दिक्कत आ जाती है. और जब प्रतिबंध लगते हैं ना, तभी इंसान वो चीज़ें ज़्यादा करने की सोचता है. वैसे हम हमारी गाड़ी को धोएंगे नहीं, वैसे ही गाड़ी पड़े रहेंगी, लेकिन जब प्रतिबंध लगते हैं तो इंसान सोचता है यार मुझे आज गाड़ी धोनी थी, लेकिन क्या करें, स्टेज पर रिस्ट्रिक्शंस आ गए. तो मैं बताना चाहूँगा ये रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से हट चुके हैं, लेकिन अब सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पानी को अच्छी तरह से सेव करना चाहिए.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो

0: आपने एंजॉय किया ही गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो गाना पर निर्वाणा नाइट्स, और फिल्म रामायण का ट्रेलर काफ़ी चर्चा में रह रहा है, आज भी ट्रेंडिंग में है, लेकिन बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म की कास्टिंग जो है वो ठीक से हुई नहीं है। उनका कहना है कि रावण की कास्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन राम और सीता की कास्टिंग जो है वो अलग तरीके से होनी चाहिए थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि लाइक राम की तो कास्टिंग ठीक है, इट्स ओके, लेकिन सीता की कास्टिंग अलग होनी चाहिए थी। बहुत लोगों का ये कहना है कि कास्टिंग ठीक से हुई नहीं है, एंड डेफिनेटली लोगों का तो मतलब जितने भी कमेंट्स मैंने पढ़ी, जितने लोगों के मैंने रिव्यू पढ़े, तो उनका ये कहना रहा है कि सीता की कास्टिंग बस दूसरी चाहिए थी। दशरथ जी की भी कास्टिंग काफ़ी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी है, पर सीता की कास्टिंग अलग होनी चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो प्लीज आप मुझे बताइए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

रहे हैं रेडियो नायरा पर नाइट्स एंड संडे की वाइब और उसके ऊपर फ्रेंडशिप डे। ये काफ़ी कमाल का कॉम्बिनेशन। वैसे फ्रेंडशिप डे जो है वो अगस्त महीने के पहले संडे पे ही आता है, और एक्साइटमेंट जो है यार वो पहले बहुत एक्साइटमेंट हुआ करती थी जब हम स्कूल में जाते थे 90s के किड, लेकिन अब तो सारी चीज़ें इतनी वर्चुअल हो गई है। तो आया किसी एक हाथ फ्रेंड का कॉल ऐसा हो रहा है, लेकिन इनिशिएट हमको भी करना चाहिए। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं बहुत बार कि यार ये कॉल करेगा वो कॉल करेगा, लेकिन सामने वाला पर्सन भी तो एक्सपेक्टेशन रख सकता है आपसे। वो भी सोचता होगा कि यार मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करना चाहिए था, तो आपने इनिशिएट किया या फिर उसने इनिशिएट किया, फ़र्क क्या पड़ रहा है। लेकिन इनिशिएट करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है।

0: आपने एंजॉय किया ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नारापुर निर्वाणा नाइट्स एंड फ्रेंडशिप डे एंड संडे की वाइब जो है वो चल रही है, काफ़ी अच्छे से चल रही है। अभी रास्ते पर भीड़ बहुत कम है, बहुत सारे लोग अपने घर लौट रहे हैं एंड ये टिमटिमाते लाइट मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। तो वक्त हो चुका है अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताने का। कल मंडे है, कल डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होके काम करना है। अगर काम अच्छे से करते हैं तो ही तो वीकेंड अच्छे से मना पाएंगे। कैसे रहा आपका आज का दिन? एंड मैंने कहा था कि कुछ अगर रहता है लाइक आपके फ्रेंड और आपके बीच में, आप किसी फ्रेंड को सॉरी कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हो, तो यू कैन से सॉरी विद द हेल्प ऑफ मी, या आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उनका नाम लेकर मेरे ऑन एयर चैनल पर सॉरी कह दूँगा यार। अगर आपकी फ्रेंडशिप मेरी वजह से अच्छी होती है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9, Zaira mein kho jao, Pakka Desi.
2: आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जान कॉर्डवेल के साथ तैयार है।
3: एवरी संडे 10 to 12 नून, लेट्स फ्लाई विद गीत बाजार।

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek

0: सलाम नमस्ते गीत बाजार
1: डांस
2: अफरोज ताज आपसे मुखातिब है।

तेरी पुकार ने दी हिम्मत रही सही। अरे तेरी पुकार ने दी हिम्मत रही सही, अगर दोस्त नहीं साथ तो आवाज ही सही। खातिनो हजरात, जावेद अख्तर का कलाम था, ये शंकर एहसन लॉय की मौसीकी, फिल्म का नाम कभी अलविदा ना कहना। 2006 की ये फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना। तो आवाज़ें थीं शफकत अमानत अली खां की, साथ में शंकर महादेवन की, और इसके अलावा आवाज़ थी कैरलीसा मॉन्टेरियो की। खातिर आज़ाद, फरमाइश आई थी मोहतरम जनाब पीटर मैथ्यू साहब की जानिब से फ्लिंट मिशिगन। वाओ, फ्लिंट तो फ्लिंट ही था और अब भी है। और उससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया, आनंद बख्शी का कलाम कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी गीत फिल्म थी मेरे मितवा मेरे मी। और आप जानते हैं आगे आजा तुझको, 1970 की ये फिल्म थी, गीत मोहम्मद रफी की आवाज़, ज्योति करीर की फरमाइश पर मॉरिस विल से। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया, फरमाइश थी चरणजीत लाल जी एंड मोहतरमा कंचन लाल जी की, साहिर लुधियानवी का कलाम था, मौसीकी थी एसडी बर्मन की, फिल्म प्यास आवाज़ मेरे 1957। वाओ, और गीता दत्त एंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों के साथ। और अब मैं कहता हूँ कि किसी की बर्थडे है, मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा की फरमाइश मुंतज़र है मुकेश की बर्थडे के मौके पर। 22 जुलाई को मुकेश पैदा हुए थे 1923 में। वाह क्या बात है। दिल ले गया था मेरा रखने के वास्ते, अरे दिल ले गया था मेरा वो रखने के वास्ते, और ठोकर से चूर चूर हुआ वाहरे रास्ते।

इश्क करने की भला उम्र कभी जाती है। अरे इश्क करने की भला उम्र कभी जाती है, आज भी दिल मेरा तेरे लिए जज्बाती है। वो बोले मुझसे कि आप आए बाहर आई। मैंने कहा ये फिल्म तो हमने देखी। बोले नहीं नहीं ये नई फिल्म है। मैंने कहा क्यों? आप आए बाहर आई पहले अंदर थी। तब मैं समझा कि आप क्या कह रहे हैं, 1971 की ये फिल्म थी आप आए बाहर आई पहले अंदर थी, ये कोई दूसरी फिल्म थी। किशोर कुमार लता की आवाज़ में जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसीकी आनंद बख्शी का कलाम। उसके बाद मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा ने जो फरमाइश भेजी है चैपल हिल से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, इसका मैं भी मुंतज़िर था, मुझे भी इस नगमे का इंतज़ार था। क्या कहने के ख़त की तरह कब आएंगी जवाबी आँखें। अरे ख़त की तरह कब आएंगी जवाबी आँखें, ताकि एक दिन देख लूँ मैं भी गुलाबी आँखें। You are listening to Geek.

0: गुलाबी आंखों के रंग गहरे, गुलाबी आंखों के रंग गहरे हुए गुलाबी गुलों के चेहरे। आनंद बख्शी का कलाम, आर डी बर्मन की मौसीकी। द ट्रेन 1970 की ये फिल्म थी, मोहम्मद रफी की आवाज़ में ऑफ कोर्स, एंड मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा की फरमाइश चैपल हिल से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा समृद्धि ठाकुर, आपकी हर फरमाइश सर आँखों पर। और अब मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा इम्तिहान देने के लिए मुंतजर हैं। बस यही समझ लीजिए कि मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा लेकर आई हैं इम्तिहान हमारे लिए। हमें कैसे गुजरना है उससे ये हम नहीं जानते, मगर इतना ज़रूर जानते हैं कि इस बार तो कहते हैं ना कि हद कर दी, यानी कि आपने बोर्डिंग नहीं बताई। अब ज़रा समाप्त फरमाएँ आप खातिनों हजरात और देखें कि वो क्या हिंट दे रही हैं इस नगमे के लिए।
1: जब मुकेश सुरैया गाएंगे,
0: आप बताइए आप भला कि ओ माई गाड, क्या पूर्णिमा जी ने कोई भी वर्डिंग उसकी नहीं दी, बल्कि उस गाने की तर्ज में कहा मुकेश और सुरैया, इसका क्या मतलब हुआ? तो गाने की तर्ज को लेकर देखा हमने, शायद कुछ मिल जाए, नहीं मिला। फिर मुकेश और सुरैया के हवाले से इस तर्ज को देखा तो पूर्णिमा गुप्ता जी पकड़ी गई। जब बादल घिर घिर आएंगे हम उनकी याद भुलाएंगे, कैसा लगा आपको ये मिसरा? याद भुलाने की बात हो रही है बादलों में खासकर। जब बादल घिर घिर आएंगे हम उनकी याद भुलाएंगे, रिमझिम रिमझिम बरसें मोती आंसू नहीं बनाएंगे।

भीगे हुए बदन पर बादल की मेहरबानी। देखें कितना अच्छा शायर हूँ मैं। भीगे हुए बदन पर बादल की मेहरबानी और बोतल पे कतरे मैं की जिस तरह रवानी। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

0: Mira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9
2: Every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, La Jolla to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Chicago, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Okla, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Georgia to Sharjah, Florida to Murazabad.
3: This is Geet Bazaar Radio Naira ki peshkash. Aapki khidmat mein hum hazir hain 10 se 12 subah 10 se 12 sham. We are your host of Ustad Jan Corwell and Ravi Chirikudi.
4: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
5: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
3: Khatino Hazrat, aaiye baat karte hain hum ke kitni tezi se insaan aage badh raha hai. तेजी से जा रही है अपने समय की गाड़ी समझ में आए कि तेजी से जा रही है अपने समय की गाड़ी इंसान मगर फिर भी पीछे ही जा रहा है सुधीर कपूर साहब की फरमाइश नई दिल्ली से आई है मोहम्मद रफी की आवाज उन्होंने पसंद की है इस नगमे के लिए और वो नगमा इस तरह से है दिल का पर्दा अजब निराला देखें आप छोटी बहर का कैसा लगेगा आपको दिल का पर्दा अजब निराला अपना देखा फौरन डाला यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार

तूफानों से होती जाती, अपने बिछड़ों से मिलवाती। अरे तूफानों से होती जाती, अपने बिछड़ों से मिलवाती, और थकती जाती गाती जाती, दिल से लेकिन धुआं उड़ाती।

वैसे तो फौलाद सड़क, फौलाद कहते हैं लोहा आयरन, वैसे तो फौलाद सड़क, फिर भी दिल है

0: दुनिया में मुसाफिर हैं, जाने को ही आए हैं। अरे दुनिया में मुसाफिर हैं, जाने को ही आए हैं। रहने को जगह अपनी और कहने को पराए हैं।
1: सिर्फ मुसाफिर।

ओ भोटे लाला तूने पिया है कैसा चल, विकट तेरा सिंगल मगर तू डबल। ओ भोटे लाला तूने पिया है कैसा चल, विकट तेरा सिंगल मगर तू डबल। किसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे, किसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे, ऐसी

हमें भी जगह दे दे खुदा से जरा डर खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे तेरा

खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, हम पर भी जरा कर दो इनायत की नजर। खुशी से कट जाए हमारा भी सफर, खिसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे, खिसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे, यो किसी का न

दुनिया की रेलगाड़ी, तन्हा था मैं बेचारा। अरे दुनिया की रेलगाड़ी और तन्हा था मैं बेचारा, नजरें मिली हुआ वो एक शख्स सबसे प्यारा। यू आर लिसनिंग टू गीत बजार। बुरके में एक मुसाफिर बाहुस्न पुर शबाब। अरे बुरखे में एक मुसाफिर बाहुस्न पुर शबाब, हाय ये मैंने क्या किया उठवा दिया नकाब।

आना कहाँ से जाना कहाँ किसको पता है। समाप्त फरमाइए, बहुत आसान सा शेर है लेकिन देखिए कितनी मुश्किल बात है कि आना कहाँ से जाना कहाँ किसको पता है, मंजिल मिलेगी उसको जो खोया हुआ है।

दुनिया पे हुआ काबिज एक रात का मुसाफिर। समाज फरमाइए कि देखिए किस तरह से एक रात का जो मुसाफिर होता है वो दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, उसको पता नहीं कि कब आया और कब गया। दुनिया पे हुआ काबिज एक रात का मुसाफिर, जब आंख सुबह खोली गाड़ी बुला रही थी। यू आर लिसनिंग टू गीत बजार।

वो कौन मुंतजर हैं सपनों की रानियों के, कौन मुंतजर हैं सपनों की रानियों के, सपनों की जो रानी है सपनों में ही आनी।

पल पल पे हाय दुनिया क्यों ढेर हो रही है। अरे पल पल पे हाय दुनिया क्यों ढेर हो रही है, और ऊपर हिसाब वाले अब देर हो रही है।

0: कहते हैं लोग क्यों कर दुनिया को रेलगाड़ी। मेरे जहन में यह सवाल आ रहा था तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि कहते हैं लोग क्यों कर दुनिया को रेलगाड़ी, मेरी इसी न लेकिन दुनिया ही लाओ जाड़ी।
1: भैया रे दुनिया रेलगाड़ी है।

पल भर के हम हैं साथी, दुश्मन हो दोस्त जो भी। समाप्त फरमाइएगा, बहुत ध्यान से सुनिए कि पल भर के हम हैं साथी, दुश्मन हो दोस्त जो भी, न जाने कौन किसकी जंजीर खींच देगा। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

लोहे के जो बने हुए दिल मोम से ढले हुए, लोहे के जो बने हुए दिल मोम से ढले हुए, दो पटरी न मिल पाती बिछड़ों को पर मिलवाती। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। वी आर योर होस्ट सफरोज जान कॉरवेल एंड रवि चिरकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। गीत बाजार आपकी फरमाइशों के लिए मुंतजर है एंड आपसे फिर मुलाकात होगी। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। इसमें कोई शक नहीं, आज कल की दुनिया में जो भी लोग दुख उठाकर दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं, वो इस ज़माने में हमेशा मुस्कुराते हैं। मेरे जहन में आता है कि इस ज़माने में मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहां से लाते।

हमें तो आपसे खुशियां खजाना खुशियों का मिलता है जब आपकी फरमाइशें के रूप में आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचती है। तो मैं कहता हूं चलते चलते मोहतरम जनाब धैर्यशील की फरमाइश सुनवाते जाएं जो न्यू जर्सी से उन्होंने फरमाइश भेजी है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि शहर मिलेगा या हमें गांव मिलेगा, लेकिन आपकी दुआएं साथ हैं तो हम खुश हैं। शहर मिले या गांव मिले, समाज फरमाए क्या रे, शहर मिले या गांव मिले दुआ कीजिए, छांव मिले। मोहब्बत जिंदाबाद।

Let's go crazy.

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम, आप सभी का स्वागत है नायरा रैली ड्रम पे, पक्का देसी पक्का लोकल और 99.9 FM HD4 101.9 FM 4090 AM। मैं हूँ आयुषी एंड आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ जरा मुस्कुराओ में। आज एक नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं, नए महीने के भी शुरुआत कर रहे हैं एंड यस एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं। इट वॉज अ हॉरिफाइंग वीक मेरे लिए पिछला हफ्ता, या सो बिफोर वी गो अहेड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई एक थिंग कि मैं बीच बीच में क्यों नहीं आ रही थी आपसे मिलने के लिए, बिकॉज यस आई हैव बीन कंसिस्टेंटली सिक अनफॉर्चुनेटली एंड पिछला हफ्ता तो मतलब इट वाज जस्ट हॉरिफाइंग। नॉर्मल बुखार चढ़ा, इट वाज नॉर्मल फ्लू के कंडीशंस, बट फिर मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा था एंड देन पता नहीं, मतलब मैं ऐसी थी कि ठीक है अब ये बुखार नहीं उतरने वाला है, बट या फॉर्चुनेटली ऑल ऑफ माय टेस्ट रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग केम बैक नॉर्मल एंड इट वाज जस्ट एक नॉर्मल बुखार। अब वो ठीक है, मतलब अभी तक गया नहीं है, पर आई एम स्टिल हियर बिकॉज ऑब्वियसली मैं पूरा पिछला हफ्ता नहीं आई थी आपसे बात करने के लिए, तो आई एम हियर नाउ विद अ लिटिल बिट ऑफ फ्लू एंड कॉफ, बट ठीक है आई एम स्टिल हियर एंड ऑब्वियसली आपको मंडे मोटिवेशन देते देते, ट्रायंगल की सारी खबरें देते देते आज दिन की शुरुआत करते हैं अलॉन्ग विद आपके फेवरेट बॉलीवुड के गाने एंड बहुत सारी ताजा खबरें। इसलिए आप भी कहीं मत जाइए, मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तो अभी आई हूँ। सुनते रहिए नायरा रैली ड्रम।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

हेलो हेलो, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. अगस्त अपने साथ बहुत सारी बारिश लेके आया. लिटरली ओवर द वीकेंड हमने देखा कि क्या ही बारिश हुई. एंड आज सुबह अगर हम देखें तो यस, स्टॉर्म्स आर मोस्टली गोइंग टू बी देयर अराउंड द कोस्ट एंड दे आर गोइंग टू बी स्कैटर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे आज के दिन. बट आज दिन भर फिर से एक बार बारिश रहेगी. स्पेशली आफ्टरनून इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स पॉसिबल है. हाइज आर गोइंग टू बी इन द अपर 80s. एंड ये जो स्कैटर्ड स्टॉर्म्स है वो मोस्ट प्रोबेबली कल और परसों भी रहने ही वाले है. सो बारिश रहेगी फॉर श्योर. इट इज जस्ट गोइंग टू स्टे विद अस मोस्ट प्रोबेबली एट लीस्ट लाइक फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक. एंड वी कुड सी अ थोड़ा बहुत ब्रेक इन द रेन फॉर लाइक सम पार्ट ऑफ द मॉर्निंग आज के दिन. बट या मतलब अभी जो सुबह जो बारिश आएगी इट इज़ गोइंग बी अराउंड द कोस्ट. तो हमें मॉर्निंग कम्यूट के वक्त एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट इवनिंग कम्यूट के वक्त फॉर श्योर बारिश रहने वाली है. इट इज़ नॉट गोइंग बी अ वॉश आउट बट बारिश इज़ गोइंग बी देयर. एंड दैट बारिश इज जस्ट गोइंग बी स्कैटर्ड. तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को बारिश एक्सपीरियंस करने मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले. हाँ, इसकी बात तो मैंने आपको बता दी है कि देयर गोइंग बी रीचिंग द अपर 80s. सो इट इज़ गोइंग बी वार्म एज वेल. इट इज़ गोइंग बी थोड़ा सा ह्यूमिड एज वेल. मगी मीटर उतना ज़्यादा नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत ह्यूमिड तो रहेगा ही रहेगा. बट या इट इज स्टिल गोइंग बी टॉलरेबल कि ठीक है. मतलब बारिश है, अपर 80s के टेम्परेचर्स है, तो उतनी जितनी ह्यूमिडिटी एक्सपेक्टेड है उतनी तो रहने वाली है फॉर श्योर. बाकी और भी खबरें मिली हैं इसलिए कहीं मत जाइए. सुनते रहिए नायरा राली ड्रम.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोग।

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं सरा मुस्कुराओ. फ्लैश फ्लडिंग का सबसे ज़्यादा धोखा था बिकॉज ऑफ द बारिश, एंड इट वाज एक मतलब ऐसा थ्रेट जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फ्लैश फ्लडिंग हो गया तो हम क्या ही कर सकते हैं. बट एक सीवियर फ्लैश फ्लडिंग के चलते स्पेशली इन द नॉर्दर्न फुट हिल्स, वहाँ पे दे हैव लाइक दिस फ्लैश फ्लडिंग हैज प्रॉम्प्टेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स इन सरी काउंटी, एंड माउंट एरी ऑल्सो इशूड एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी एट 10 PM ऑन सैटरडे नाइट. एंड द स्टेटमेंट सेड कि वहाँ का जो फ्लडिंग है इट हैज कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के रोड्स, यूटिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, एंड बहुत सारे जो वहाँ के रोड्स एंड ब्रिजेस है दे आर नाउ क्लोज्ड अराउंड द सिटी. विंस्टन सेलम ऑल्सो रिपोर्टेड कि वहां पे वाटर रेस्क्यूज उनको करने पड़े. देर वर फ्लडिंग इन साइड ऑफ द होम्स, एंड वहां पे उनको वो वाटर रेस्क्यूज करके लोगों को बचाना पड़ा बिकॉज अपेरेंटली अराउंड मिडनाइट 5 to 10 inches फेल जस्ट विद इन एन आवर. इतनी बारिश एक्सपेक्टेड ही नहीं थी इन द सेंस कि इतनी आएगी, इतना पानी भर जाएगा, बट या दैट हैपन. ऑल्सो द इमरजेंसी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर फॉर सरी काउंटी सेड दैट क्रूज कंडक्टेड 6 वाटर रेस्क्यूज ऑन स्ट्रैंडेड व्हीकल्स ऑन सैटरडे इवनिंग इटसेल्फ. एंड फिर कल का दिन भी मोस्ट प्रॉब्ली उसी में गया कि जो भी सैटरडे को नुकसान हुआ है उसको निपटाने में. एंड नेशनल वेदर सर्विस ने कहा दैट वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड अबाउट 4 feet एज ऑफ लास्ट नाइट, बट उन्होंने फिर भी रेजिडेंट्स को विजिलेंट रहने के लिए कहा है कि अगर पानी है तो प्लीज आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, एंड जिन रास्तों पर आपको पानी नजर आ रहा है वहां पर मत जाइए. रास्ते तो कहीं कई जगहों पर पूरे गिर गए हैं एंड बहुत ही भयानक सिचुएशन है. सो या उन्होंने वो रास्ते बंद ही कर दिए हैं, बट वी आर जस्ट होपिंग कि जल्द से जल्द हमें कुछ अच्छी खबर मिले वहां से. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: Discover wellness through the richness of Indian traditions. Stay tuned to healthy रहने के लिए musical parampara on Radio Naira.
2: या इतनी बारिश के चलते हमारी ड्रॉट सिचुएशन में कुछ बदलाव आया है। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल। मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। सो बदलाव तो आया है इन द सेंस की सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड, कंडीशंस हैज इम्प्रूव्ड। पूरी की पूरी ड्रॉट खत्म नहीं हुई है बट या दिस बारिश हैज बेसिकली हेल्प्ड अ लॉट इन द सेंस कि जहां जहां पे पानी भरना चाहिए वहां वहां पे पानी भर रहा है। इतना कि आज से हमें पता चला है दैट द सिटी ऑफ राली हैज लिफ्टेड उनके वाटर रिस्ट्रिक्शंस दैट हैव बीन इन प्लेस फॉर मंथ्स। सो द सिटी ने कहा दैट द स्टेज वन वाटर रिस्ट्रिक्शंस, जिसके चलते हमने देखा कि पीपल कुड यूज स्प्रिंकलर्स एट लिमिटेड टाइम्स एंड ग्राउंड इरीगेशन सिस्टम्स एट लिमिटेड टाइम्स, दे आर लिफ्टेड एज ऑफ मंडे August 3 दैट is today. And this news is coming after pichle hafte ka report from the US Army Corps of Engineers that showed ki Falls Lake had risen more than 2 feet over the past week to 84% of its normal level. So the recent rain has made a pretty big difference, but abhi bhi kuch kuch jagahon pe dry conditions are still there. And abhi tak Falls Lake like full capacity tak nahi aaya hai, but situation has improved itna ki water restrictions chale gaye hain. अभी ये सिर्फ रैली की बात है कि रैली ने अपने वाटर रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर दिए हैं। बाकी सम पार्ट्स ऑफ एक काउंटी जैसे कि कैरी एंड एपेक्स, दे आर स्टिल अंडर ईयर राउंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। बाकी फोकेवरीना, उन्होंने भी अपने स्टेज वन वाटर रिस्ट्रिक्शंस आज से बंद कर दिए हैं। बट या ओवरऑल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड विच इज अ गुड थिंग। इट विल स्टिल टेक सम टाइम कि ड्रॉट कंडीशंस कम्प्लीटली चले जाए एंड हम ड्रॉट से बाहर आ जाए, बट इट इज स्टिल एक होपफुल सिचुएशन ऐसा हम कह सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ।

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. So as of Friday, this has become a very serious situation. The county has confirmed 468 cases since May, and I'm talking about the cases of cyclosporiasis. 12 people in Wake County have been hospitalized because of this parasite, and baki ke jo cases hai wo abhi freshly report kiye gaye hain. The majority of cases in our state have been reported in Wake County. State health officials are abhi bhi working to determine the sources of the parasite. Ki ye parasite aaya kahan se hamare yahan pe. We know that, you know, wo iceberg lettuce se wo aaya tha, but hamare yahan pe exactly kahan se aaya abhi tak nahi pata hai. Wake County Department of Health and Human Services ne kaha that the outbreak is coming from multiple sources. They are not able to track it down ek jagah pe, and the FDA has not yet identified which products are linked to the illnesses. Officials also have not said where the cases are located, but uske cases bahut hi zyada badh rahe hain, and they are like, obviously agar aap bahar ka khana khane wale hain to make sure that आप जहाँ से खा रहे हैं वो जगह अच्छी है. आपको पता है कि उनका हाइजीन अच्छा है. फूड सेफ्टी टिप्स घर के लिए इंक्लूड वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द बाथरूम एंड बिफोर हैंडलिंग फूड. एक्सपर्ट्स ने कहा है दैट कुकिंग कैन किल द पैरासाइट एंड दे एडवाइज कुकिंग प्रोड्यूस टू अ टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 158 डिग्रीज फारेनहाइट, दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस. बाकी ऑब्वियसली आपको आपका प्रोड्यूस अच्छे से धो के ही खाना है. आप खुद भी हाथ धो के खाना खाइए, इधर उधर हाथ मत लगाइए, एंड जस्ट यू नो फॉलो द बेसिक रूल्स खाना खाने के पहले, एंड यू गाइस वुड बी सेफ. बट या उसके केसेस नजर आ रहे हैं तो थोड़ी सी भी अगर सिम्टम्स नजर आते हैं प्लीज गो टू द डॉक्टर. डू नॉट लेट इट वर्सन. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी के साथ.

0: was a beautiful closing ceremony. Hello G, welcome back. आपने tune in किया है Naira Rally Drum पका देसी पका लोकल. मैं हूँ आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. I'm talking about the Commonwealth Games जो अभी फिलहाल ग्लासगो में चल रहे थे एंड वो कल खत्म हो चुके हैं. 11 दिन के बाद हमें हमारा जो मेडल टैली है वो भी पता चल गया है कि exactly where does India stand, because कल जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें ग्लासगो ने कॉमनवेल्थ गेम्स को बाय बाय कह दिया है एंड अब वो इंडिया में होने वाला है इन 2030 इन अहमदाबाद. एंड कल की जो सेरेमनी थी उसमें उन्होंने सेरेमोनियल हैंडओवर भी किया ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्लैग टू ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैम्पियन नीरज चोपड़ा एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पीटी उषा एंड द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात अकम्पनीड बाय द वॉइस ऑफ स्कॉटिश सिंगर शरीन कट केल्विन. एंड उन्होंने फिर सिम्बॉलिकली जो गेम्स है वो ग्लासगो से अहमदाबाद को ट्रांसफर कर दिए फॉर द सेंटेनरी गेम्स जो 2030 में होने वाले हैं. सो ऑब्वियसली जब ये ऐसा हैंडओवर हुआ सारे लोग ऑडियंस में तो खुश थे ही एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टू होस्ट इट. द टाइटल इज गोना बी द वर्ल्ड इज वन फैमिली दैट इज वसुधैव कुटुंबकम एंड या एवरीवन इज जस्ट लाइक सुपर एक्साइटेड कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे यहाँ पे होंगे. बट व्हाट अबाउट अभी के गेम्स, क्या हुआ, इंडिया का रिपोर्ट कार्ड क्या है अभी के गेम्स के लिए. सो 122 एथलीट्स फ्रॉम इंडिया केम टू द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो एंड 38 ऑफ देम रिटर्न्ड विद मेडल्स with the nation finishing fourth in the overall medal tally, which is obviously a good thing. It might seem a thoda sa like downgrade from the 61 medals jo humne 2022 mein jeete the, but overall humne jo gold medals jeete hai wo bahut hi badhiya jeete hai. Matlab main kya hi batau, athletics mein humne total 10 medals jeete hain, baki para athletics mein humne total 6 medals jeete hain, uske baad boxing mein humne total 10 medals jeete hain, जूडो में 4 मेडल्स जीते हैं एंड जूडो में इट वाज लिटरली द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जो हमने अभी तक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में. पैरा पावर लिफ्टिंग में 1, उसके बाद बाकी हमने वेट लिफ्टिंग में भी देखे 8 मेडल्स हमने जीते हैं. इट वाज ओवरऑल अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यू नो गेम एंड प्ले ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड वी आर एक्साइटेड फॉर द 2030 गेम्स. स्टेडियम में हूँ आयुष की.
1: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
3: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
2: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
3: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: सालों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

What exactly is the conflict situation? आपने ट्यून किया है नायरा रैली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूँ आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. वेल, वी हैव फ्रेश न्यूज दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज सेइंग दैट नेगोशिएशंस विद ईरान आर गोना बी स्टार्टिंग आज दोपहर को, दिस आफ्टरनून, क्लेमिंग दैट देयर इज अ डील ऑन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ विद एन अग्रीमेंट टू फॉलो ऑन द डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान. ईरानियन स्टेट मीडिया ने कहा, बेसिकली उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है दैट तेहरान हैड आस्क्ड ट्रंप टू कॉल ऑफ द प्लान्ड यूएस स्ट्राइक्स. बाकी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का सिचुएशन ये है कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा दैट दे आर इन टॉक्स विद ओमान टू एस्टैब्लिश अ सेफ टेम्पररी राउट फॉर वेसल्स थ्रू द क्रिटिकल वाटरवे, एडिंग दैट दे आर नॉट करंटली इन नेगोशिएशंस विद द यूएस. There is also some movement in the lane close to the Omani coast, according to shipping sources, but abhi tak unki taraf se official kuch nahi aaya. So basically, Iran udhar Oman ke saath baat kar raha hai ki dekho, US ke saath hamara kuch negotiation nahi chal raha hai, to yahan se hum ships bhej dete hain. Aur idhar hame pata chal raha hai ki aaj they might actually sit down and start their negotiations. They might have a deal. They might, like Iran actually might follow on the denuclearization of itself. And yeah, also in a message preceding Trump's threat to attack Iran, ek US military officer ne sare troops ko basically email kiya ki we want like new creative and unconventional ways to pressure and punish Iran. To uske bare mein details pata chala ki what exactly does this mean, and uske bare mein hum thodi der mein baat karenge because it is a big thing. To wo kya hai exactly thodi der baad pata chalega. Tab tak aapko email chahiye, sunte rahiye Nara Rally Drama, main hoon aapke saath.

हेलो हेलो, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल। मैं हूं आयुषी एंड मेरे साथ आप फिलहाल एंजॉय कर रहे थे जरा मुस्कुराओ। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ अ लिटिल अर्ली बिकॉज इट इज मंडे। मंडे को ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलना चाहिए यार, एक बढ़िया सा वीकेंड एंजॉय करने के बाद। या मतलब कुछ भी हो सकता है, हम पार्टी करने गए होंगे, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय किया होगा, फैमिली के साथ एंजॉय किया होगा, कहीं एक लाइक ओवरऑल वीकेंड ट्रैवल करके आए होंगे कि दो दिन बस यहाँ से बाहर जाके आते हैं। इफ नॉट दैट तो जस्ट आपने आपके नींद के ऊपर कैचअप किया, इन द सेंस कि आप बस सोए हैं, बाकी कुछ नहीं किया है। बट ओवरऑल आफ्टर रिलैक्सिंग वीकेंड गेटिंग बैक टू रूटीन जस्ट फील्स लाइक कि मतलब आ गया फिर से एक बार मंडे। हमेशा का ही है, हर हफ्ते का ही है, लाइक बट आ गया ना मंडे, अब क्या ही कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज सम मोटिवेशन एंड दैट मोटिवेशन इज राइट हियर। डॉक्टर मधु आने वाली है थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर मंडे मोटिवेशन। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बस यही रहना है, मोटिवेशन लेके आपके दिन की शुरुआत करनी है। एंड इफ यू वांट इट अनइंटरप्टेड यू कैन डाउनलोड हमारी ऐप, दैट इज रेडियो नायरा यूएसए। इट इज अवेलेबल ऑन बोथ ऐप स्टोर प्ले स्टोर, वेरी इजी टू डाउनलोड, वेरी इजी टू यूज। हम लिटरली आपके साथ रहेंगे, लिटरली वन क्लिक अवे, सो डू डू दैट। एंड बाकी मिलेंगे कल, होपफुली मेरी तबीयत अच्छी रहे, अभी मैं बीमार ना पड़ूँ, इसके लिए प्लीज़ होप करते रहिए, प्रे करते रहिए। एंड या मिलते हैं कल, तब तक के लिए सुनते रहिए नायरा रैली ड्रम 99.9 FM HD 4, 11.9 FM 4090 AM। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ सुंदर दिवस अहेड एंड सी यू टुमॉरो।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रो।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करे 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3888.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 984-254-0111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
2: जाना, डायमंड म्यूजिक प्रेजेंट.

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क़ मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: हेल्दी लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships. With expert service, convenient locations, and flexible buying options, LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com. It's easier.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: वैसे तो फ्रेंडशिप्स डे कल था, बट दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ एक दिन क्यों लिमिट करना? हाँ, Let's know some friendships that prove Bollywood's best stories aren't always on screen. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And from Kareena Kapoor Khan, Karishma Kapoor, Malaika Arora, and Amrita Arora's iconic girl gang to Salman Khan and Sanjay Dutt's decades-long bond, some Bollywood friendships have stood the test of time. And reminder, some Bollywood's strongest bond exists long after the cameras stop rolling. Firstly, the girl gang, obviously, Kareena, Karishma, Malaika, Amrita, unhe to maine hamesha aise paparazzi moment mein dekha hai, saath mein cafe se restaurant. से बाहर निकलते हुए. देन सलमान एंड संजय, अभी रिसेंटली सलमान ने संजय दत्त को हक करते हुए एक बहुत ही अच्छा सा पोस्ट भी डाला था. इट वॉज सो ओवरवेलमिंग. देन ऑब्वियसली काजोल, करण जौहर, शाहरुख खान, ये जब ये ओजी ट्रायो है, मतलब कुछ कुछ होता है इससे भी पहले के टाइम से, दे आर लाइक इनसेपरेबल. देन रणवीर कपूर एंड आयान मुखर्जी, इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि जब ये साथ में काम भी करते हैं तो उसमें भी वंडर्स होते हैं. देन आलिया भट्ट एंड आकांक्षा रंजन कपूर, और दोनों की फ्रेंडशिप तो हमने इन दोनों की शादियों में इतने अच्छे से विटनेस किया था, लाइक दे आर विथ ईच अदर ऑल द टाइम, सपोर्टिंग ईच अदर, और जिस तरह से वो एक दूसरे की शादी में इमोशनल हो रहे थे, इट प्रूव्स देयर फ्रेंडशिप. Then सोनम कपूर एंड मसाबा गुप्ता, फैशन गर्लीज, भाई वाइब सेम होता है, तब भी कई बार अपनी फ्रेंडशिप इतनी अच्छे से ब्लूम करती है. कुछ मैच होना हो, वाइब मैच होना चाहिए. देन भावना पांडे, माहिब कपूर, सीमा सजदे, नीलम कोठारी, आई लव हाउ देयर डॉटर्स आर ऑल्सो फ्रेंड्स विद ईच अदर, यू नो, लाइक सुहाना खान, अनन्या पांडे, शनाया कपूर एंड नव्या नंदा, दे ऑल, इनकी मम्मा भी एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इनके बच्चों ने भी एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड्स चुना है. इट्स सो क्यूट. देन ओरी, जानवी एंड खुशी, दिस ट्रायो इज सो वायरल, लाइक जब भी इनका सोशल मीडिया में पोस्ट आता है, आई गो गागा ओवर देम. देन रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर, गुंडे मूवी में भी इन दोनों को हमने साथ में देखा था, उसमें भी इनकी फ्रेंडशिप्स जैसी थी, आई कैन से दैट रियल लाइफ में भी वैसी ही होगी. देन फराह खान एंड सानिया मिर्जा, इनके शोज देखना, कई बार जब ये साथ में कुछ शो में जाते हैं, ऐसी दोस्ती झलकती है, इट्स लाइक आई वॉन्ट वॉट दे हैव, वैसा वाला फील हो जाता है फिर. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, आई विल बी बैक.
1: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ. Tune into Radio Naira 2025 की परफेक्ट शुरुआत.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनत रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: tune up your spider sense because Spider-Man Night is here with the North Carolina Courage this Friday, July 31st. Bring the whole family to First Horizon Stadium, where Courage will face off against Orlando Pride at 8 p.m. It'll be a super fun night for fans of all ages, with Spider-Man themed activations, fun for the little ones, and a free Spider-Man Funko Pop for the first 500 fans to arrive. Don't miss Spider-Man Night with NC Courage. Tickets at tickets.nccourage.com.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22-carat gold and 18-carat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest-free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers. In Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3838.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: अक्रॉस 400 years, four daughters rise with a single heartbeat for the motherland. Join Four Dimensions Entertainment for an unforgettable English play celebrating India's women warriors. Virangana on Sunday, August 30th, 3 p.m. Stewart Theatre. Group, student and senior citizen discounts available. Purchase tickets 4de.eventbrite.com.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1400.

0: every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रचा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। मंडे की इस खूबसूरत और मदहोश कर देने वाले शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। वीकेंड का खुमार अब उतर चुका है, मंडे का काम पूरा हो चुका है और अब समय है अपनी गाड़ियों की खिड़कियां नीचे गिराने का, ठंडी हवा जो चल रही है उसे महसूस करने का और रेडियो की वॉल्यूम को फुल करने का। मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। तो सुनाने जा रहा हूं मेरे सभी प्यारे लिसनर को इस प्यार भरी शाम का ये पहला गाना। बने रहिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा ये अगला गाना। खुश तो है ना आप एंड मुस्कुरा रहे हो ना, ये पूछना मैं भूल गया था। सुनते हैं पहला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो।

एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। तो दोस्तों आज सोमवार 3 अगस्त 2026 की सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत भरी खबर से शुरुआत करते हैं। आज सुबह से पूरे रैली शहर में स्टेज 1 वाटर रेस्ट्रिक्शंस यानी पानी के इस्तेमाल पर जो पाबंदियां लगी थी उन्हें प्रशासन ने पूरी तरह हटा लिया है। आपको याद होगा कि जून और जुलाई की शुरुआत में हम सूखे से परेशान थे, लेकिन पिछले महीने यानी जुलाई में ऐसी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है कि मौसम विभाग के मुताबिक 1931 के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा गीला जुलाई है। इस वजह से हमारा फॉल्स लेक जलाशय जब अपनी क्षमता से like 84% तक भर चुका है। हालांकि सिटी काउंसिल ने कहा कि पाबंदी भले ही हट गई हो लेकिन पानी कोई बर्बाद ना करे ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। एंजॉय करते हैं अगला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने ये गाना, एंड वही अगर मौसम की बात करें तो WRAL वेदर अलर्ट स्टेशन के अनुसार आज रात भी आसमान में बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसी बीच आज दोपहर वेक काउंटी और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं की वजह से कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और पावर कट होने की खबरें भी आ रही है, तो सड़कों पर जरा संभल कर चलिएगा क्योंकि ये मौसम में अक्सर ऐसी चीज़ें होती है। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए एंड गाड़ी की स्पीड को ना कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आपके गाड़ी का स्पीड कंट्रोल में है तो आप गाड़ी को अच्छी तरह से किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर स्पीड कंट्रोल में नहीं है तो बहुत दिक्कत आ सकती है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने गाना? एंड मैं ये कह रहा था कि यार कैसे चल रही है आपकी मंडे की शाम। वेल अगर आप सोच रहे हो कि यार क्या मंडे आ गया, अच्छा खासा वीकेंड में जी रहे थे, ये मंडे क्यों आता है, तो मैं आपको बता दूं कि वीकेंड भी इस वजह से एंजॉय कर रहे हैं ताकि मंडे टू फ्राइडे हम अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप खुद के बारे में लेजी बनकर सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली आपको लेजी फील होने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मोटिवेट रहकर अपना काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, उसके बाद तो यार कुछ खराब होना ही नहीं है। लेकिन मंडे की शाम को सकारात्मक बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आज रात पूरे ट्रायंगल एरिया में नेशनल नाइट आउट इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। क्या है ये इवेंट, कहां होने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इस गाने के बाद बने रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

0: तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे कि संडे तो चला गया, मंडे आ गया, लेकिन मंडे को भी सकारात्मक कैसे बनाना है। तो मैंने आपको कहा था कि आज रात पूरे ट्रायंगल एरिया में नेशनल नाइट आउट इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। WRAL नेशनल नाइट आउट इवेंट्स पुलिस और कम्युनिटी के बीच का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। स्थानीय प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वो सुरक्षा और आपसी एकता दिखाने के लिए आज रात 7 से 10 बजे के बीच अपने अपने घरों की पोर्च लाइट, मतलब बाहरी लाइट को ज़रूर चालू रखें। तो भाई, अपने घरों की लाइट ऑन रखिए, सुरक्षित रहिए और मंडे के मूड को एकदम फ्रेश रखिए, क्योंकि आप फ्रेश रहोगे तो सब कुछ फ्रेश रहेगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएट है ना यार, एकात्मता रखनी चाहिए, यूनिटी रखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का दे।